0: Ka were consigned to flames in Haryana's Agroha Dham. His final rites were performed by his son and SL Group Chairman Dr. Subhash Chandra. Several prominent leaders, including Union Minister Manohar Lal Khattar, former Union Minister Dr. Harshvardhan, minister from the Haryana government and lawmakers, were present at Agroha Dham, where the last rites were performed.
1: मेनका जी हमारे बीच में शरीर से नहीं रहे, लेकिन उनके जो विचार और जिस विचारों के वो धनी थे और जितना बड़ा उन्होंने साम्राज्य अपना परिवार के नाते, अपने बाकी सब चीज़ों के नाते, खास करके अग्रोहा धाम के नाते जो खड़ा किया है, ये विचार हमेशा हमेशा स्मरण रहेगा। स्मरणीय इन विचारों के धनी गोयनका जी आज हमारे बीच में शरीर से नहीं हैं, विचारों से हैं, तो भी जैसे अपने परंपरा है, मैं इस अवसर पर अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, भारत सरकार की ओर से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
0: During the funeral, Dr. Subhash Chandra announced the establishment of Sri Nand Kishore Goenka University in Hisar in the memory of his father and his legacy of service to society and the nation. The institution will be built on 32 acres with initial investment of around 100 crore rupees.
2: हम परिवार के चारों भाइयों ने ये निर्णय किया क्योंकि ये इलाका पूरा एंटरप्रेन्योर्स का इलाका है, तो सरकारी संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उनसे हमने एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी गोयनका जी के नाम से स्थापित करेंगे। परिवार की इधर सामने ही 32 एकड़ जगह पड़ी है, उसका उपयोग करेंगे। लगभग 100 करोड़ का खर्चा इस यूनिवर्सिटी पे आएगा।
0: प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शावर्ड रिच प्रेज इन हिज पर्सनल लेटर ऑन श्री नंदकिशोर गोयनका'स ब्लेसेड लाइफ फिल्ड विद सेल्फलेस पब्लिक सर्विस। द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ also paid tribute to its dedicated volunteer. The RSS lauded Sri Goenka's efforts for social work and cow welfare. Political leaders, including Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, described Sri Goenka's demise as a loss for society.
3: Sri Nand Kishore Goenka ji, एक दूरदर्शी उद्योगपति, कर्मयोगी एवं समाज सेवी थे। उन्होंने अपने परिश्रम, सादगी और दूरदृष्टि से न केवल उद्योग जगत में विशेष पहचान बनाई, बल्कि समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनका निधन समाज, उद्योग जगत तथा उनके असंख्य शुभचिंतकों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है।
4: ये बड़े ही दुख की बात है कि नंदकिशोर गोयनका जी, जो सुभाष चंद्रा जी के पिताश्री हैं, उनका निधन हुआ है। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और विशेष रूप से गोसेवा के लिए बहुत समर्पित रहे हैं, और राष्ट्रभक्त व्यक्तित्व का निधन ये बहुत ही दुख की बात है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
5: मैं जानता था उन्होंने सारी उम्र मेहनत किया, समाज सेवी की और उनके परिवार ने बड़ी तरक्की करी, सब उनके आशीर्वाद से की। आज वो नहीं रहे तो, लेकिन समाज में और अपनी जन सेवा के उसमें अपना वो एक स्थान बना के गए हैं।
0: बाबा रामदेव पेड हिज लास्ट रिस्पेक्ट्स टू श्री नंद किशोर गोयनका एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अ पार्ट ऑफ द गोयनका फैमिली।
6: उनकी आत्मा हंसती मुस्कुराती रहे, हमें अपने आशीर्वादों से अभिषिंचित करती रहे, और जो उन्होंने राह दिखाई है इस गोयनका परिवार के साथ में, हम भी इसी परिवार के एक अंग हैं। इन चार भाइयों में पांचों भाई मैं भी हूँ। और ऐसे ही आपने भी हमको प्यार दिया और इस परिवार पर ऐसा ही अधिकार हमने भी माना है।
0: Born on the 28th of September 1930, Sri Goenka decided to devote his life to the grassroots social transformation of the society. Being a committed Swayamsevak of RSS, he spent years of his life organizing social events and promoting social harmony among people. His personality was so inspiring that people across different parts of the country paid tribute to him.